0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: नमस्कार श्रोते, आपण ऐकत आहात रेडिओ 93.4 FM आपली माणसं आपला आवाज. श्रोते, आपण आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात आज ऐकणार आहोत की आपण कधीही जर आपल्याला थोडी बहुत ताप आली असेल, सर्दी झाला असेल, खोकला झाला असेल किंवा अंग दुखत असेल, असं कुठलाही जरी थोडं बहुत आपल्याला वाटलं की आपण लगेच मेडिकलमध्ये जातो आणि म्हणतो की मला असं असं होतं आहे, गोळ्या द्या. समोरचा मेडिकलवाला गोळ्या देतो, आपण त्या घेतो, पण याचा निश्चित आपल्या शरीरावर नेमका परिणाम, दुष्परिणाम असा काय होतो हे आपल्याला माहीत नसतं. आज याच विषयी आपण जाणून घेणार आहोत की सेल्फ मेडिकेशन म्हणजे स्वतःहून औषधं घेणं किती घातक आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. यासाठी आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर चिन्मय चौरसिया यांना. ते तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार. डॉक्टर चिन्मय चौरसिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा.
2: नमस्ते, धन्यवाद संजय जी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए.
1: अच्छा, तो डॉक्टर चिन्मय चौरसिया, ये सेल्फ मेडिकेशन को आप किस तरीके से इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे?
2: देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन एक खुद अपने आप में एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड है. सेल्फ मतलब खुद से, मेडिकेशन मतलब दवाई. बट अगर हम इसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहे तो सेल्फ मेडिकेशन उस दवाई को बोली जाएगी जहाँ पे आप खुद की बीमारी खुद से ही डायग्नोस करके आप खुद के दवाई चूज करते हो. आप कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हो, कोई डॉक्टर से आप डोज नहीं पूछते हो, आपको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है. आप यहाँ वहाँ गूगल से या कोई मैगजीन या पेपर से देख के आप कोई दवाई ले लेते हो, यही सेल्फ मेडिकेशन है.
1: अच्छा, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन करते समय ऐसा ही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो रहा है, मुझे खांसी लग रही है समझो, तो मैं सीधा मेडिकल में जाऊँगा और उनके पास से गोलियाँ ले लूँगा, या तो मुझे कुछ गोलियाँ दे देंगे या कुछ लिक्विड दे देंगे और मैं वो ले लूँगा. तो आप इसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है?
2: देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये संजय जी. ये आजकल आप हमारे नेबर्स में, हमारे खुद के घर में माँ बाप जो ये करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाएंगे थोड़े चंद पैसे बचाने के लिए, वो लोग बोलते हैं कि ये छोटी सी खांसी है इसके लिए तो हम दवाई ले लेते हैं. वो जाते हैं मेडिकल स्टोर में, बस बोलते हैं सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं कि हमारे बेटे को खांसी है, आप कुछ दवाई दे दीजिए खांसी के लिए. बट अभी जो नॉर्मल लोगों जो जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, उन्हें ये पता नहीं रहता कि खांसी भी बहुत तरह की होती है. जैसे सूखी खांसी होती है, गीली खांसी होती है. अभी ये दो तरह की खांसी बहुत जनरल पॉपुलेशन को पता है, बट खांसी की और प्रकार भी होते हैं. खांसी कब आ रही है, सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, किसके साथ आ रही है, खांसी का रंग, खांसी के साथ जो कफ जो हम बोलते हैं उसके साथ वो आ रहा है कि नहीं, तो ये सब बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशंस होती है. अभी हम जब जाते हैं मेडिकल स्टोर में तो वो जो फार्मासिस्ट जो रहता है मेडिकल स्टोर, उनके पास उनको तो बेसिकली जो ब्रांडिंग का रहता है, उनको एक सिरप बेचना रहता है, तो वो आपको दे देते हैं. अभी वो सिरप हो सकता है सूखी खांसी के लिए हो या गीली खांसी के लिए हो, वो उनको नहीं पता, वो आपको दे दिए, आपने वो लेना स्टार्ट कर दिया. वो कभी कभी एक सिरप होता है जो गीली खांसी के लिए होता है, जो सुखाने वाला रहता है, पर अगर आपको सूखी खांसी है तो वो सिरप आपको और डिफिकल्टी में डाल देगा, क्योंकि आपका जो कफ है वो और गाढ़ा होते जाएगा, फिर आपको ऐसे थ्रोट पेन आएगा, फिर चेस्ट में कंजेशन होगा, फिर आपकी ये बीमारियां और बढ़ती जाएगी. ऐसी बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग जाते हैं, जैसे मेरे बच्चों को फीवर आ गया या मुझे फीवर है, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, तो ये सेम दवाई दे दीजिए. लोग ऐसा करते हैं, उनको डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे ये मिसिंग हो गया तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में पढ़ सकते हो, अभी नहीं तो आने वाले फ्यूचर में तो जरूर पढ़ सकते हो.
1: अच्छा, कुछ कॉमन चीजें मैं पूछना चाहूंगा जो कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए हम आमतौर पे ज्यादा करते हैं. जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे गोलियां दे दो
2: जी.
1: मुझे एसिडिटी हो रही है तो गोलियां दे दो
2: जी.
1: साथ में मेरा बदन दर्द कर रहा है तो उसके लिए गोलियां दे दो, सर दर्द कर रहा है इसके लिए गोलियां दे दो, तो इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे?
2: देखिए, अभी ये सर दुखना, एसिडिटी, ये सब हमारे लाइफ में डे टू डे हमारे खान पान की आदत से, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत कॉमन हो गया है. हम आजकल इन सब पे ध्यान भी नहीं देते. पहले ये ज़माने के जो लोग थे, जब उनके ज़्यादा टाइम था, ज़्यादा फ्री समय थे, खुद के बारे में सोच सकते थे, तो वो डॉक्टर के पास जाते थे, यानी वो हमारे पास आते थे, वो आराम से बैठते थे. हम जो 10-15-20 मिनट जो देते हैं पेशेंट के साथ, हम उनके हर बात को, उनके हर हरकतें को, उनको कैसा डिस्क्राइब कर रहे हो अपने सिम्टम्स, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं. मतलब जैसे आपने बताया हेडेक, तो हेडेक अभी हम देखते कि सर के किस भाग में उनका हेडेक आ रहा है, सर के आगे हेडेक आ रहा है कि आँख के पीछे हेडेक आ रहा है, कैसा हेडेक आ रहा है, ऐसा चुभने वाला हेडेक आ रहा है कि कुछ बोलते सा सर पकड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे प्रकार के हेडेक से अभी ये सब आम जनता को पता नहीं रहता है। अभी वो हेडेक के लिए जाएंगे तो बहुत नॉर्मल दवाई है बाहर, जैसे डिस्प्रिन सुना ही होगा आपने या फिर सैरिडॉन बहुत सुना रहेगा, इसके कंटेंट्स लोग देखते नहीं है। वो जाएंगे दवाई मिल जाती है, ये 10-15-20 रुपये में मिल जाएगी, बट ये जो 10-15-20 रुपये है आपके, ये आप ले रहे हो बिना किसी तकलीफ के आप ले रहे हो, आपको जरूरत भी नहीं है, और ये आप अपने अंदर डाल रहे हो दवाई, उस टाइम तो इस दवाई का असर तो होगा, क्योंकि दवाई क्या है, एक्चुअल में केमिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, एलोपैथी इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, यहाँ पे नेचुरल ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो आपके या शरीर के अंदर जाएगा तो कुछ केमिकल ही चेंजेस करता है, उसके कारण आपका उस टाइम सिम्टम्स कम हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इसने रिलीफ करा दिया, फिर वापस जैसे ही इसका असर खत्म होगा तो आप वापस जाओगे दवाई लेने, क्योंकि आपको वो वापस आएगा बढ़ के, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस विशियस साइकिल है जो चलते रहेगा, बट आपको जो स्टार्टिंग के जो 10-15-20 रुपए आपने डाले वो आगे जाके कई लाखों में बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि कुछ दवाई आप पे काम ही नहीं कर पाएगी, ये हेडेक की दवाई आपको जरूरत ही नहीं थी फिर भी आप लेते जा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे एसिडिटी के कारण आपको पता नहीं आपका एसिडिटी क्यों आ रहा है, हो सकता है बहुत नॉर्मल रहेगा, आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो इसके कारण एसिडिटी रहे, सब चीज के लिए दवाई जरूरी नहीं होती है। तो अभी जैसे कि स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं कि ड्यूओडेनल अल्सर, ये एक कॉमन टर्म है हमारे मेडिकल साइंस में, ये स्टूडेंट में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग के कॉलेज के स्टूडेंट भी, मेडिकल के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो रात भर पढ़ते हैं, रात में खाना नहीं खाते, रात को 11 बजे डिनर होता है उनका, पर सुबह होते होते 3-4 बजे तक जो पढ़ते हैं उनमें वो खाना पच जाता है, फिर वो एसिड जो पेट में रहता है हमारा HCl वो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो निकलते रहता है, तो फिर उसके कारण है ना हमारी जो पेट की लाइनिंग है जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं वो टूटने स्टार्ट होती है, उसके कारण अल्सर पैदा होते हैं, तो ये भी एक एसिडिटी का कारण है। इसको बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े समय पे खाते रहिए, हमेशा दवाई की जरूरत नहीं होती है।
1: तो जैसे कि अब एसिडिटी में अगर हम देखा जाए तो एसिडिटी में ऐसा होता है कि अगर छाती में, अगर हमारे चेस्ट में कुछ पेन हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ अलग अलग तरीके का पेन हो
2: जी,
1: लेकिन लोग आमतौर पे क्या सोचते हैं कि अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो या तो मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या फिर मुझे एसिडिटी हो
2: जी,
1: तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं
2: जी जी। तो देखिए अभी ये भी आपने बहुत एकदम क्या बोल सकते हैं हम, सटीक पॉइंट अपने निकाला है। अभी हार्ट अटैक पे कैसे पहुंच जाते हैं लोग, मतलब लोगों को पता ही नहीं रहता है हार्ट अटैक मतलब क्या था, पहले के लोग को नहीं पता, उनको हॉस्पिटल जाने के बाद वो आधे टाइम बेहोश रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर डॉक्टर बताएंगे कि आपको हार्ट अटैक आया था, बट अभी क्या होता है लोग बोलते मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये था और है, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत थिन लाइन हो गया है। अभी इसके जो ये थिन लाइन का कारण क्या है, जैसे कि आजकल के न्यूज समाचार जो कुछ कुछ समय पे बताते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी चलता है कि हम डरा भी रहे लोग को। अभी अगर आप खुद डर जाओगे तो आपको 100 बीमारियां दिखेगी जो आपके अंदर है पर आपको अभी तकलीफ नहीं दे रही, तो आप हर चीज को ट्रीट करने जाओगे ना तो ये सही बात नहीं है। शरीर भी एकदम ऐसा क्लीन चिट नहीं रह सकता है। अभी जैसे आपने बताया कि हार्ट अटैक, अभी ये कहाँ से पता चलता है लोगों को, न्यूज में तो नहीं बताएंगे कि आपको छाती दुख रही है तो आपका हार्ट अटैक ही होगा। लोग जाते हैं गूगल पे, आज का जो जमाना है उसको हम बोलते हैं गूगल पेशेंट का जमाना, लोग सर्च करेंगे पेन इन चेस्ट कॉजेस, तो गूगल क्या दिखाएगा, वो तो मोस्ट कॉमन कॉजेस दिखाएगा जो मोस्ट टूवर्ड्स डेथ चले जाते हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अगर मैं लिखूँ पेन इन चेस्ट, उसका पहला कॉज रहेगा कि मे बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हार्ट अटैक के तरफ है, वो ये नहीं बताएगा कि आपको एसिडिटी के तरफ से हो सकता है या आपको कोई चोट लगी है उसके कारण हो सकता है, आपका जस्ट सिंपल सा मसल स्ट्रेच है सोते वक्त, बहुत सारे कारण है आपकी छाती दुखने का, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी खांसी होगी उसके कारण आपका छाती दुख रहा है, जरूरी नहीं आपका हार्ट अटैक हो। इसके कारण लोग डर जाते हैं, लोग डरते हैं फिर वो इधर उधर फोन कॉल करना चालू करेंगे, और आप 100 जन को कॉल करो 100 तरीके के आपको उपाय मिलेंगे, और उसमें आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप इसमें अनिवार्य है कि आप गलत ही उपाय पे जाओगे, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहोगे क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि ये गलत न्यूज़ ना मिल जाए मुझे कि हाँ आपको हार्ट अटैक चल रहा है। इस डर के कारण आप अंदर बैठे रहते हो घर में, और आप अपने से कुछ दवाई चालू करते, आप सेकना चालू कर दोगे छाती को, आप कुछ कफ सिरप पीना चालू कर दोगे, या कोई कोई लोग तो कुछ हार्ट के दवाइयां भी खाने चालू कर देंगे. तो ये तकलीफ हो रही है जो गूगल के ऊपर सर्च करते लोग.
1: अच्छा, हर एक चीज में गूगल और चैट जीपीटी पे नहीं जाना चाहिए.
2: जी जरूर, एकदम सही बात.
1: अच्छा, तो एक डोसेज का एक रहता है, जैसे कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर क्या कहता है कि 5 दिन के लिए आप ये दवाइयां लीजिए.
2: जी,
1: तो मैं क्या करता हूँ, एक तो 1-2 दिन के लिए ले लूंगा
2: जी,
1: या फिर बाकी के 5 दिनों के लिए भी लिया तो मैं 1-2 दिन लेके बाकी के सब जो दवाई है वो फेंक दूंगा मैं. तो ये डोसेज का इम्पोर्टेंस कितना है?
2: देखिए, मेडिकल साइंस में डोसेज मतलब ये तो आप लोग के लिए बस एक नंबर रहेगा, 5 दिन 3 दिन 4 दिन, बट ये मेडिकल साइंस में एक कोर्स है, हर चीज का कोर्स रहता है. जैसे अब इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल का कोर्स है, मेडिकल कॉलेज 5.5 साल का कोर्स है, नॉर्मल बीए 2 साल का कोर्स रहेगा. तो आप ऐसा इंजीनियरिंग या मेडिकल ऐसा 1-2 साल में पढ़ के तो निकल नहीं सकते. आप ना इंजीनियर बन सकते हो ना मेडिकल. आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा बट आप आधे नॉलेज पे निकलोगे, आपका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा. वैसे ही दवाई आपका काम करेगी आपके शरीर में. अगर हमने आपको 5 दिन का दवाई दी है तो 5 दिन के लिए ही है. हम वो मेडिकल साइंस में कुछ प्रूवन थिंग्स रहती है जो बहुत पहले बहुत सालों से प्रूव होके आई है, रिसर्च में आई है कि ये दवाई 5 दिन तक काम करेगी तो 5 दिन तक ही काम करेगी. ऐसा अभी देखिए, थोड़े लोग करते हैं जो 5 दिन के 7 दिन कर देंगे, और एक तरह के लोग हैं जो 5 दिन का 2 दिन में छोड़ देंगे. अभी ये जो डिफरेंस मेजर है, आप हमारे घर में एग्जांपल देख लीजिए. आपने कुछ एक महंगी दवाई ली 1000 रुपये की, तो हमारे घर की जो माएँ रहेंगी वो समझो 1000 रुपये की दवाई 5 दिन में ख़त्म करनी है, बट उसमें थोड़े पूड़िया बच जाएगी, 3-4 पूड़िया बच जाएगी. अभी क्योंकि वो 1000 रुपये की है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली की माएँ हैं वो बोलेगी 3-4 दवाई तो बची है, कंप्लीट कर लो, 1000 रुपये फालतू के वेस्ट हो जाएंगे. तो 5 दिन का एक्सटेंड करके 10 दिन कर देते हैं, जो डोज बढ़ा देंगे. और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो 5 दिन से 2 दिन करते हैं, वो जनरली हमारे एज के लोग हैं कि अभी मुझे फुटबॉल खेलना है, मेरे को छाती दुख रहा था, 5 दिन का दवाई दिया गया था, मेरे 2 दिन में छाती दुखना बंद हो गया, तो अभी मैं कल फुटबॉल खेलूंगा और मैं दवाई बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा काम हो गया. तो ये जो दो तरह के जो लोग हैं, ये दोनों भी गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डोज जिस तरह के से काम करते हैं शरीर में, उसका हर दवाई का अपना टाइम रहता है. ऐसा नहीं कि इनो नहीं है सब 6 सेकंड में काम कर गए, या मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई. सब दवाई अंदर जाती है, कुछ दवाई 36 आवर्स में काम करेगी, धीरे धीरे धीरे धीरे निकलती रहती है पेट में. सबका अलग अलग एक पाथ है, कुछ लीवर में जाके काम करती है, कुछ खून में जाके काम करेगी, कुछ पेट से एब्जॉर्ब होगी. तो हर चीज़ का एक अपना अपना समय, एक कहावत है ना, सही चीज को टाइम लगता है और जल्दी का काम शैतान का काम होता है.
1: अच्छा, ये सेल्फ मेडिकेशन की जो बात है, जिसको कोमॉर्बिडिटी रहती है तो उसके लिए तो बहुत डेंजर चीज हो सकती
2: जी,
1: है.
2: जी सही बात है. तो कोमॉर्बिडिटी, अभी मैं पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कोमॉर्बिडिटी क्या होता है. मॉर्बिडिटी, इसमें भी 2 वर्ड है. सब आप वर्ड को अगर संधि विच्छेद करोगे तो आपको उसका मतलब खुद ही समझ जाएगा. आपको कोई ऐसा विद्वान नहीं चाहिए कि वो आपको समझा सके. जैसे सेल्फ मेडिकेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी कोमॉर्बिडिटी भी आपको मैं तोड़ के बताता हूँ. 2 वर्ड्स है इसमें, एक को है और एक मॉर्बिडिटी है. मॉर्बिडिटी मतलब आपके शरीर में आपको पहले से कुछ बीमारियां है, वो मॉर्बिडिटी. और को मतलब उसके साथ आपको बाकी बीमारियां भी है. जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपको एक हार्ट कंडीशन है, ये आपका एक मॉर्बिडिटी है. इसके साथ आपको लंग का भी कुछ तकलीफ आ गया, जैसे निमोनिया हो गया या टीबी आ गया, तो ये आपको कोमॉर्बिडिटी आ गया. तो अभी ये सब है ना ग्रुप ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं. ये हमारे हाथ में नहीं होती है, ये ना शरीर के हाथ में होती है. ये जैसे जैसे इन्फेक्शन पकड़ते हमें, या जैसे जैसे हमारे शरीर के सिस्टम जो खराब होते हैं वो अपना दिखते हैं हमको असर. अभी ये सब चीज़ भी जब पिक्चर में आती है, प्ले में, हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो मेडिकेशन रहते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं. क्योंकि जो दवाई दिल पे, फॉर एग्जांपल, जो दवाई दिल पे काम कर रही है वो शायद उल्टा काम करेगी अब हमारे लंग्स पे. तो हमें ऐसी एक बीच की दवाई ढूंढना है जो ना ज़्यादा दिल को तकलीफ पहुँचाए ना ज़्यादा लंग्स को पहुँचाए. तो इसके भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ता है. ऐसा ये बुक में फिक्स नहीं दिया रहता है कि अगर हार्ट और लंग्स खराब है तो ये दवाई ए दे दो, हार्ट और पेट खराब है तो दवाई बी दे दो. ऐसा नहीं होता. हर इंसान का जेनेटिक्स अलग है, डीएनए अलग है, हर इंसान को अलग दवाई सूट करती है, हर इंसान को अलग कंपनी की दवाई सूट करती है. बहुत कॉम्बिनेशंस करके, बहुत सोच समझ के हम ये दवाइयाँ का लिस्ट बनाते हैं. अभी इसमें आप थोड़े से जाओगे, अब बीच में आपको सर दुख रहा है, आप जाओगे कोई दवाई ले लोगे फार्मासिस्ट से, वो दवाई इस कॉम्बिनेशन में फिट होती है कि नहीं आपको पता है? नहीं पता है आपको. कैसे पता रहेगा आपको? क्योंकि डेप्थ नॉलेज है नहीं, ये हम लोग को भी नहीं पता रहता कि कौन सी दवाई किसके साथ रिएक्ट कर जाए. ये हमारे पास कभी कभी पेशेंट आते हैं जिनका दवाई रिएक्शन हो जाता है, तो हम वो दवाई को बंद करके दूसरी दवाइयाँ देते हैं. तो अभी दवाइयाँ जो केमिकल्स है आपस में ना लड़ाई भी कर सकते हैं या आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, मतलब डेथ का मामला भी बना सकते हैं, या आपके लिए एकदम बहुत एकदम मिराकुलसली काम भी कर सकती है.
1: अच्छा, तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, अगर समझो हम कंटिन्यूअसली लेते रहते और एट द एंड पॉइंट अगर हमको कोई बड़ी बीमारी होती है, उसके लिए सर्जरी करनी पड़े या कुछ लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना पड़े, तो इसके लिए जो डॉक्टर आप जैसे है ट्रीटमेंट करने वाले, उनको कुछ दिक्कत हो सकती है.
2: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजय जी. अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत कॉमन सी दवाई है अजिथ्रोमाइसिन मार्केट में, आपको मुझे सब माओ को सब पापा लोग को सब बच्चों लोग को इनफैक्ट सबको पता रहेगा, बहुत घर में इजीली मिल जाती है अजिथ्रोमाइसिन. ये एक एंटीबायोटिक है, इसके वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक है. अभी हमारे देश में या हमारी दुनिया में तकलीफ ये हो रही है कि ये सब आराम से मिल जाती है, इसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़े दवाइयाँ हैं जिसको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी किया है, तो वो अभी भी बची हुई है. ये सब दवाइयाँ जो आसानी से मिल जाती है, बच्चे या

0: आए खरीद लेती है इसको कि चलो इसको फीवर हो गया, 3 दिन से फीवर है तो इसको हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, इससे कम हो जाएगा. बट उन्हें यह पता नहीं रहता कि एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है उस बच्चे को. फीवर भी वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है. अब वायरल फीवर में एंटीबैक्टीरियल दोगे तो आपको कुछ काम मिलेगा नहीं, आपके शरीर में जाके वो दवाइयाँ वेस्ट होगी. तो अभी दूसरा टॉपिक, अभी यहाँ पे मैंने बोला आपके शरीर में जाके दवाइयाँ वेस्ट होगी, बट ये आप ध्यान रखिए जो दवाई जो है आपका जो केमिकल है वो कभी आपके शरीर में जाके वेस्ट नहीं होता. वो कुछ ना कुछ तो आपको बॉडी में चेंजेस करेंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट लेवल पर चेंज है. छोटे छोटे चेंजेस लास्ट में आके बहुत बड़े हो जाते हैं. कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही ये जो आपका जो शरीर के अंदर जो गंदा सागर बन रहा है ये आपको डुबा सकता है आगे जाके. ये एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में जा रहे हैं, आपके शरीर को पता है हाँ ये दवाई आ रही है, ये दवाई मेरे अंदर आएगी मुझे ठीक कर देगी. तो इट्स लाइक आपके शरीर को आदत हो जाती है इस दवाई की. मैं एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल देता हूँ, शरीर को आदत हो जाएगी एजिथ्रोमाइसिन की, हाँ ये एजिथ्रो आता है मेरे शरीर के अंदर मेरे को बचा लेता हमेशा. एक टाइम पे आएगा कि आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा. ये एक सेकेंड लेवल है, पहले आप 2 डोज पे काम करते थे, अभी आपको मेरे को 4 डोज देना पड़ रहा है, ये सेकेंड लेवल आ गया. थर्ड लेवल होता है कि आप कंटिन्यूस फिर भी आप सेल्फ मेडिकेशन करते जा रहे हो, बीच में डॉक्टर की सुनते नहीं हो, फिर आपको पावर बढ़ाना पड़ता है दवाई का. फिर आप एक बार 250 mg देते हो एजिथ्रोमाइसिन, बाद में आप 500 mg देने लग जाओगे, 625 mg दोगे, तो इससे पावर बढ़ गया. पावर बढ़ गया मतलब उसका केमिकल बढ़ गया, तो उतना आपके बॉडी में केमिकल लोड बढ़ गया. और आज आप दवाई ले रहे हो तो केमिकल आपके बॉडी से कब एलिमिनेट हो रहा है वो आपको पता नहीं, ना हमें वो पता है. तो उतने देर जितने देर वो आपके शरीर के अंदर वो चेंजेस करेगा. फिर ये सब ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके इसमें तकलीफ पैदा करती रहेगी, जो आप लेते रहते हो सेल्फ मेडिकेशन. एंड में किसी के साथ ऐसा हो नहीं, बट फिर कभी कभी बुरा हादसा हो गया, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल में, तो उस टाइम हमें बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल एक साइड पर हॉस्पिटल एक बचाने वाला मंदिर भी है, दूसरे साइड पर वो मरने वाला ये डेथ बेड भी है. तो वहाँ पे दोनों का बैलेंस रहता है, एक साइड पे वो हेवन टाइप रहता है, एक साइड पे वो डेथ वाला जोन रहता है. तो वहाँ पे कंटामिनेशन भी बहुत रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमको मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकेशन देना पड़ता है. फिर अभी उसमें हम देंगे एजिथ्रोमाइसिन आपको, जिसको भी जरूरत पड़ा उसको हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे, पर वो काम ही नहीं कर रहा है शरीर पे. ये हमको कब पता चलेगा, 2-3 दिन के बाद उसमें उसकी हालत और गिर जाएगी नीचे. अभी एजिथ्रो काम नहीं कर रहा, इसके साथ हम इसके जैसे और भी दवाई देंगे, जैसे नॉर्फ्लॉक्सोसिन है, क्लिंडा, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, वो देते हैं हम, वो भी काम नहीं कर रही है. तो इसका मतलब क्या है, वो काम क्यों नहीं कर रही है? आप तो पहले सोचे कि पहले तो काम किया, एक ही गोली लेता था मैं काम कर जाती थी. ये यहाँ पे एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है. जैसे बचपन में कैसे आप बार बार मार खा रहे हो, अब पढ़ाई के लिए पापा मारते हैं, हम बार बार मार खाते हैं, फिर हमको पता चलता है हम मार्क्स नहीं लाएंगे फिर भी मार पड़ने वाली है. वो हमारा मेंटल ऐसा बन जाता है कि मार तो पड़ने वाली है, हाँ दर्द ही नहीं होता. अब फिर वो बेल्ट से किधर चप्पल पे चले आए हमें पता ही नहीं चलेगा. तो ऐसे ही शरीर में अजीथ्रो का रेजिस्टेंस ही हो गया है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, उसका केमिकल जरूरत ही नहीं करता है बॉडी में. तो अभी हमको ये तकलीफ आ जाती है डॉक्टर लोग की, अभी दवाई चलाए तो चलाए कौन सा, क्योंकि एक मेडिकल वर्ल्ड कितना भी प्रोग्रेस कर ले हमें एक लिमिटेशन है दवाई की. कितना भी हम केमिकल्स को कॉम्बिनेशन कर ले हमें एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस ही है. फिर हमको आपका ब्लड लेके हमको रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है. तो जितना हमारे पास 100 दवाई थी आपको उस टाइम बचाने के लिए, आपकी ही गलती के कारण अभी हमारे पास 10 दवाई बचाने के लिए. तो आपका ही जो बचने का रेट होता है वो 100 से 10 पे आ जाता है. तो ये जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि आप अपना ही गंदा सागर बना रहे हो खुद को डूबने के लिए, तो ये वैसा ही है.
1: अच्छा, और एक सवाल आ जाता है इसके साथ, जो कि आपने कहा था कि गूगल मेडिसिन यानी गूगल पे हम जाके सर्च करते हैं और गूगल जो कहता है उसके तरह से हम मेडिसिन लेते हैं. उसके साथ आजकल एक बहुत सारा वर्ड चलो टेली मेडिसिन, यानी कि हम किसी डॉक्टर को एज ए मोबाइल पे या बहुत सारे ऐसे ऐप भी है उसके जरिए हम मेडिसिन ले सकते हैं. तो इसको आप कैसे देखते हो?
0: देखिए टेली मेडिसिन ये जो कंसेप्ट है, अभी इसका भी मैं अगर डेफिनेशन बताऊं, टेली मतलब जो हम कम्युनिकेट कर पाए, जो हम लोग को फिजिकली जाना ना पड़े, वीडियो कॉल से या फोन कॉल से इससे कम्युनिकेट कर पाए उसको बोलते हैं हम टेली. और मेडिकेशन मतलब जो फोन पे मिल जाए, इस पे ही दवाई मिल जाए. हम बहुत करते हैं ना, जैसे हमारे परिवार में डॉक्टर होगा, कोई होगा डॉक्टर, तो हम बोलते हैं बेटा मुझे सर्दी हुआ है, मुझे खांसी हुआ है, तो कौन सा दवाई दूँ ये, और वो भी कोई दवाई बता देगा क्योंकि फैमिली मेंबर है. ये टेली मेडिसिन का एक तरीका हुआ. अभी ये जो कंसेप्ट है ये फॉरेन में बहुत चलता है, वो वहाँ पे बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है. तो टेलीमेडिसिन के भी दो भाग है, एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है. अभी फॉरेन में ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे फुल एडवांटेज चल रहे, वहाँ पे भी डिसएडवांटेज है, बट वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि वो लोग सुधर गए ओवर द ईयर्स. और ये धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है क्योंकि 5G हो गया, तो लोग टेलीमेडिसिन का यूज़ कर रहे. अभी टेलीमेडिसिन हम ये कंसेप्ट आया क्यों था इस दुनिया में, ताकि जो बाहर के गाँव है, जो

0: ये दवाइयाँ हमें भिजवा दीजिए, हम आजकल उनसे पूछते भी नहीं है कि क्या भेज क्या देना है क्या। पहले तो हम पूछते थे, अभी हम एक लेवल और ऊपर चले गए। तो वो घर पे लाएगा, फ्री होम डिलीवरी, ये कंसेप्ट से हम जितना आलसी होते जा रहे हैं उतने हो रहे। डॉक्टर को भी हम जाएंगे भी, अभी मैंने देखा है बहुत सारे ऐप्स भी है जो वीडियो कॉल करती है डॉक्टर के साथ। जो डॉक्टर का आप फिजिकली मीट करोगे उसका 2000 फीस रहेगा फॉर एग्जांपल, वही उस ऐप पे वो 250 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो आप 2000, इतना जो बड़ा अमाउंट गैप है वो आप बचाने के लिए आप वीडियो कॉल कर दोगे। थोड़ी बीमारियाँ वीडियो कॉल से हो जाएगी ट्रीट, मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं। पर फिर थोड़ी बीमारियाँ जो आपके स्किन के रिलेटेड है, जैसे डर्मेटोलॉजी हम बोलते हैं, वो हमको देखना पड़ता है, हमको यूवी लाइट के अंदर देखना पड़ता है कि क्या बीमारी है और किधर है, कैसा दिख रहा है। वो फिर भी थोड़े डॉक्टर्स उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं चाहते कि वो प्रैक्टिस करे वैसा, बट लोग का डिमांड है वैसा कि हमें बस 250 में ये डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए। तो ये टेलीमेडिसिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में प्ले कर रहा है हमारे भारत में, पर आने वाले सालों में मैं आशा करता हूँ कि और सुधरेगा और लोग और थोड़े जागरूक होंगे इसके बारे में और इसको थोड़ा वाइजली यूज करेंगे।
1: अच्छा श्रोते, आपण जी चर्चा करत होतो ती डॉक्टर चिन्मय चौरसिया यांच्यासोबत, ते तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत। तो डॉक्टर चिन्मय जी, आप क्या कहना चाहोगे कि फाइनल गोल्डन वर्ड्स, जैसे तो सेल्फ मेडिकेशन का तो हमने कहा ही है, फिर भी एक अगर एक मिनट में कुछ कहना चाहोगे तो समरी ऑफ द अपना इंटरव्यू जो है उसके बारे में क्या कहना
0: जी? मैं थोड़ा नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप मैं यही विनती करता हूँ नॉर्मल इन पब्लिक लोग से, जो जनरल पॉपुलेशन है, कि जैसा आजकल हवा चल रहा है मार्केट में कि डॉक्टर लोग पैसा खाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये पैसा खाने की बात है नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन आपके लिए, और ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग के वजह से ही हो रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक इन्वेस्टिगेशन में जो पहले पता चलता था वो नहीं पता चल रहा है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आपको छोटी से छोटी बीमारी भी हो, चाहे आप मेजर स्पेशलिस्ट से ना दिखाई, आप नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर से दिखाई, जो MBBS है सादा, उनका फीस भी कम रहता है, पर आप उनको दिखाइए, उनको भी नॉलेज रहता है, तो वो आपको बराबर डायग्नोस करे, मतलब सही समय पे सही दवाई जानी चाहिए सही क्वांटिटी पे। ये जो तीन चीज मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे जाके कुछ हो नहीं। इट्स बेसिकली यू आर प्रिजर्विंग योर फ्यूचर बाय एक्टिंग करेक्टली इन प्रेजेंट।
1: तर श्रोते होते डॉक्टर चिन्मय चौरसिया जे तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत, आणि त्यांनी एकूणच सेल्फ मेडिकेशन म्हणजे स्वतःहून आपण जे औषधं घेतो तर त्याविषयी त्यांनी विस्तृत असं मार्गदर्शन केलेलं आहे। डॉक्टर चिन्मय जी, आप यहां पे आए और जो जानकारी दी उसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।
0: धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद।
1: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, श्रोते रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण जर अँड्रॉइड फोन वापरत असाल तर त्यावर आपण गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन आपण रेडिओ तेरणा हे ॲप डाउनलोड करू शकता। आपण आयफोन वापरत असाल तर ॲप स्टोअरवरूनही रेडिओ तेरणा डाउनलोड करू शकता। रेडिओ गार्डनवरही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानाबादला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा, किंवा आपण radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटलाही भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा। आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970509900 9970500900। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
2: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ॲप प्ले स्टोअरवरून, टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डनवरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ, वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: आजादी हो,
1: हो जाती है, आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो नोना, सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: वकील साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: नमस्कार श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. श्रोतेहो, आपण आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात आज ऐकणार आहोत की आपण कधीही जर आपल्याला थोडी बहुत ताप आली असेल, सर्दी झाला असेल, खोकला झाला असेल किंवा अंग दुखत असेल, असा कुठलाही जरी थोडं बहुत आपल्याला वाटलं की आपण लगेच मेडिकलमध्ये जातो आणि म्हणतो की मला असं असं होतं आहे, गोळ्या द्या. समोरचा मेडिकलवाला गोळ्या देतो, आपण त्या घेतो, पण याचा निश्चित आपल्या शरीरावर नेमका परिणाम, दुष्परिणाम असा काय होतो हे आपल्याला माहीत नसतं. आज याच विषयी आपण जाणून घेणार आहोत की सेल्फ मेडिकेशन म्हणजे स्वतःहून औषधं घेणं किती घातक आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. यासाठी आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर चिन्मय चौरसिया यांना. ते तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार. डॉक्टर चिन्मय चौरसिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा.
2: नमस्ते, धन्यवाद संजय जी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए.
1: अच्छा, तो डॉक्टर चिन्मय चौरसिया, ये सेल्फ मेडिकेशन को आप किस तरीके से इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे?
2: देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन एक खुद अपने आप में एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड है. सेल्फ मतलब खुद से, मेडिकेशन मतलब दवाई. बट अगर हम इसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहे तो सेल्फ मेडिकेशन उस दवाई को बोली जाएगी जहाँ पे आप खुद की बीमारी खुद से ही डायग्नोस करके आप खुद के दवाई चूज करते हो. आप कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हो, कोई डॉक्टर से आप डोज नहीं पूछते हो, आपको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं, आप यहाँ वहाँ गूगल से या कोई मैगजीन या पेपर से देख के आप कोई दवाई ले लेते हो, यही सेल्फ मेडिकेशन है.
1: अच्छा, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन करते समय ऐसा ही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो रहा है, मुझे खांसी लग रही है समझो, तो मैं सीधा मेडिकल में जाऊँगा और उनके पास से गोलियाँ ले लूँगा, या तो मुझे कुछ गोलियाँ दे देंगे या कुछ लिक्विड दे देंगे और मैं वो ले लूँगा. तो आप इसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है?
2: देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये संजय जी. ये आजकल आप हम हमारे नेबर्स में, हमारे खुद के घर में माँ बाप जो ये करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाएंगे, थोड़े चंद पैसे बचाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि छोटी सी खांसी है इसके लिए तो हम दवाई ले लेते हैं. वो जाते हैं मेडिकल स्टोर में, बस बोलते हैं सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं कि हमारे बेटे को खांसी है, आप कुछ दवाई दे दीजिए खांसी के लिए. बट अभी जो नॉर्मल लोगों जो जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, उन्हें ये पता नहीं रहता कि खांसी भी बहुत तरह की होती है. जैसे सूखी खांसी होती है, गीली खांसी होती है. अभी ये दो तरह की खांसी बहुत जनरल पॉपुलेशन को पता है, बट खांसी की और प्रकार भी होते हैं. खांसी कब आ रही है, सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, किसके साथ आ रही है, खांसी का रंग, खांसी के साथ जो कफ जो हम बोलते हैं उसके साथ वो आ रहा है कि नहीं, तो ये सब बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशंस होती है. अभी हम जब जाते हैं मेडिकल स्टोर में तो वो जो फार्मासिस्ट जो रहता है मेडिकल स्टोर उनके पास, उनको तो बेसिकली जो ब्रांडिंग का रहता है उनको एक सिरप बेचना रहता है, तो वो आपको दे देते हैं. अभी वो सिरप हो सकता है सूखी खांसी के लिए हो या गीली खांसी के लिए हो, वो उनको नहीं पता, वो आपको दे दिए, आपने वो लेना स्टार्ट कर दिया. वो कभी कभी एक सिरप होता है जो गीली खांसी के लिए होता है, जो सुखाने वाला रहता है, पर अगर आपको सूखी खांसी है तो वो सिरप आपको और डिफिकल्टी में डाल देगा, क्योंकि आपका जो कफ है वो और गाढ़ा होते जाएगा, फिर आपको ऐसे थ्रोट पेन आएगा, फिर चेस्ट में कंजेशन होगा, फिर आपकी ये बीमारियां और बढ़ती जाएगी. ऐसी बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग जाते हैं. जैसे मेरे बच्चों को फीवर आ गया या मुझे फीवर है, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, तो ये सेम दवाई दे दीजिए, लोग ऐसा करते हैं. उनको डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे ये मिसिंग हो गया तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में पढ़ सकते हो, अभी नहीं तो आने वाले फ्यूचर में तो जरूर पढ़ सकते हो.
1: अच्छा, कुछ कॉमन चीजें मैं पूछना चाहूंगा जो कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए हम आमतौर पे ज्यादा करते हैं. जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे गोलियां दे दो
2: जी.
1: मुझे एसिडिटी हो रही है तो गोलियां दे दो
2: जी.
1: साथ में मेरा बदन दर्द कर रहा है तो उसके लिए गोलियां दे दो, सर दर्द कर रहा है इसके लिए गोलियां दे दो, तो इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे?
2: देखिए, अभी ये सर दुखना, एसिडिटी, ये सब हमारे लाइफ में डे टू डे हमारे खान पान की आदत से, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत कॉमन हो गया. हम आजकल इन सब पे ध्यान भी नहीं देते. पहले ये ज़माने के जो लोग थे, जब उनके ज़्यादा टाइम था, ज़्यादा फ्री समय थे, खुद के बारे में सोच सकते थे, तो वो डॉक्टर के पास जाते थे, यानी वो हमारे पास आते थे, वो आराम से बैठते थे. हम जो 10-15-20 मिनट जो देते हैं पेशेंट के साथ, हम उनके हर बात को, उनके हर हरकतें को, उनको कैसा डिस्क्राइब कर रहे हो अपने सिम्टम्स, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं. मतलब जैसे आपने बताया हेडेक, तो हेडेक अभी हम देखते कि सर के किस भाग में उनको हेडेक आ रहा है, सर के आगे हेडेक आ रहा है कि आँख के पीछे हेडेक आ रहा है, कैसा हेडेक आ रहा है, ऐसा चुभने वाला हेडेक आ रहा है कि कुछ बोलते ऐसा सर पकड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे प्रकार के हेडेक्स है। अभी ये सब आम जनता को पता नहीं रहता है। अभी वो हेडेक के लिए जाएंगे तो बहुत नॉर्मल दवाई है बाहर, जैसे डिस्प्रिन सुना ही होगा आपने या फिर सैरिडॉन बहुत सुना रहेगा। इसके कंटेंट्स लोग देखते नहीं है, वो जाएंगे दवाई मिल जाती है ये 10-15-20 रुपए में मिल जाएगी, बट ये जो 10-15-20 रुपए है आपके ये आप ले रहे हो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी तकलीफ के आप ले रहे हो, आपको जरूरत भी नहीं है और ये आप अपने अंदर डाल रहे हो दवाई, उस टाइम तो इस दवाई का असर तो होगा क्योंकि दवाई क्या है एक्चुअल में, केमिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, एलोपैथी इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, यहाँ पे नेचुरल ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो आपके या शरीर के अंदर जाएगा तो कुछ केमिकली चेंजेस करता है, उसके कारण आपको उस टाइम सिम्टम्स कम हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है मुझे इसने रिलीफ करा दिया, फिर वापस जैसे ही इसका असर खत्म होगा तो आप वापस जाओगे दवाई लेने, क्योंकि आपको वो वापस आएगा बढ़ के, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस विशियस साइकिल है जो चलते रहेगा, बट आपको जो स्टार्टिंग के जो 10-15-20 रुपए आपने डाले वो आगे जाके कई लाखों में बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि कुछ दवाई आप पे काम ही नहीं कर पाएगी, ये हेडेक की दवाई आपको जरूरत ही नहीं थी फिर भी आप लेते जा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे एसिडिटी के कारण आपको पता नहीं आपका एसिडिटी क्यों आ रहा है, हो सकता है बहुत नॉर्मल रहेगा आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो इसके कारण एसिडिटी रहे, सब चीज के लिए दवाई जरूरी नहीं होती है। तो अभी जैसे कि स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं कि ड्यूडोनल अल्सर, ये एक कॉमन टर्म है हमारे मेडिकल साइंस में, ये स्टूडेंट में बहुत कॉमन होता है क्योंकि अभी इंजीनियरिंग के कॉलेज के स्टूडेंट भी, मेडिकल के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो रात भर पढ़ते हैं, रात में खाना नहीं खाते, रात को 11 बजे डिनर होता है उनका, पर सुबह होते होते 3-4 बजे तक जो पढ़ते हैं उनमें वो खाना पच जाता है, फिर वो एसिड जो पेट में रहता है हमारा HCL वो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो निकलते रहता है, तो फिर उसके कारण है ना हमारी जो पेट की लाइनिंग है जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं वो टूटने स्टार्ट होती है, उसके कारण अल्सर पैदा होते हैं। तो ये भी एक एसिडिटी का कारण है, इसको बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े समय पे खाते रहिए, हमेशा दवाई की जरूरत नहीं होती है।
1: तो जैसे कि अब एसिडिटी में अगर हम देखा जाए तो एसिडिटी में ऐसा होता है कि अगर छाती में, अगर हमारे चेस्ट में कुछ पेन हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ अलग अलग तरीके का पेन हो
2: जी,
1: लेकिन लोग आमतौर पे क्या सोचते हैं कि अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो या तो मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या फिर मुझे एसिडिटी हो
2: जी गई
1: है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं
2: जी जी। तो देखिए अभी ये भी आपने बहुत एकदम क्या बोल सकते हैं हम, सटीक पॉइंट अपने निकाला है। अभी हार्ट अटैक पे कैसे पहुंच जाते हैं लोग, मतलब लोगों को पता ही नहीं रहता है हार्ट अटैक मतलब क्या था, पहले के लोग को नहीं पता, उनको हॉस्पिटल जाने के बाद वो आधे टाइम बेहोश रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर डॉक्टर बताएंगे कि आपको हार्ट अटैक आया था, बट अभी क्या होता है लोग बोलते मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये था और है, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत थिन लाइन हो गया है। अभी इसके जो ये थिन लाइन का कारण क्या है, जैसे कि आजकल के न्यूज समाचार जो कुछ कुछ समय पे बताते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी चलता है कि हम डरा भी रहे लोग को। अभी अगर आप खुद डर जाओगे तो आपको 100 बीमारियां दिखेगी जो आपके अंदर है पर आपको अभी तकलीफ नहीं दे रही, तो आप हर चीज को ट्रीट करने जाओगे ना, तो ये सही बात नहीं है। शरीर भी एकदम ऐसा क्लीन चिट नहीं रह सकता है। अभी जैसे आपने बताया कि हार्ट अटैक, अभी ये कहाँ से पता चलता है लोगों को, न्यूज में तो नहीं बताएंगे कि आपको छाती दुख रही है तो आपका हार्ट अटैक ही होगा। लोग जाते हैं गूगल पे, आज का जो जमाना है उसको हम बोलते हैं गूगल पेशेंट का जमाना, लोग सर्च करेंगे पेन इन चेस्ट कॉजेस, तो गूगल क्या दिखाएगा, वो तो मोस्ट कॉमन कॉजेस दिखाएगा जो मोस्ट टूवर्ड्स डेथ चले जाते हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अगर मैं लिखूँ पेन इन चेस्ट, उसका पहला कॉज रहेगा कि मे बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हार्ट अटैक के तरफ है, वो ये नहीं बताएगा कि आपको एसिडिटी के तरफ से हो सकता है या आपको कोई चोट लगी है उसके कारण हो सकता है या आपका जस्ट सिंपल सा मसल स्ट्रेच है सोते वक्त, बहुत सारे कारण है आपकी छाती दुखने का, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी खांसी होगी उसके कारण आपका छाती दुख रहा है, जरूरी नहीं आपका हार्ट अटैक हो। इसके कारण लोग डर जाते हैं, लोग डरते हैं फिर वो इधर उधर फोन कॉल करना चालू करेंगे, और आप 100 जन को कॉल करो 100 तरीके के आपको उपाय मिलेंगे और उसमें आप फिर से कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर आप इसमें अनिवार्य है कि आप गलत ही उपाय पे जाओगे, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहोगे क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि ये गलत न्यूज़ ना मिल जाए मुझे कि हाँ आपको हार्ट अटैक चल रहा है। इस डर के कारण आप अंदर बैठे रहते हो घर में और आप अपने से कुछ दवाई चालू करते, आप सेकना चालू कर दोगे छाती को, आप कुछ कफ सिरप पीना चालू कर दोगे, या कोई कोई लोग तो कुछ हार्ट के दवाइयां भी खाने चालू कर देंगे। तो ये तकलीफ हो रही है जो गूगल के ऊपर सर्च करते लोग।
1: अच्छा, हर एक चीज में गूगल और चैट जीपीटी पे नहीं जाना चाहिए।
2: जी जरूर, एकदम सही बात।
1: अच्छा, तो एक डोसेज का एक रहता है, जैसे कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर क्या कहता है कि 5 दिन के लिए आप ये दवाइयां लीजिए।
2: जी,
1: तो मैं क्या करता हूँ, एक तो 1-2 दिन के लिए ले लूंगा
2: जी,
1: या फिर बाकी के 5 दिनों के लिए भी लिया तो मैं 1-2 दिन लेके बाकी के सब जो दवाई है वो फेंक दूंगा मैं। तो ये डोसेज का इम्पोर्टेंस कितना है?
2: देखिए, मेडिकल साइंस में डोसेज मतलब ये तो आप लोग के लिए बस एक नंबर रहेगा, 5 दिन 3 दिन 4 दिन, बट ये मेडिकल साइंस में एक कोर्स है, हर चीज का कोर्स आता है। जैसे अब इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल का कोर्स है, मेडिकल कॉलेज 5.5 साल का कोर्स है, नॉर्मल BA 2 साल का कोर्स रहेगा। तो आप ऐसा इंजीनियरिंग या मेडिकल ऐसा 1-2 साल में पढ़ के तो निकल नहीं सकते, आप ना इंजीनियर बन सकते हो ना मेडिकल। आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा बट आप आधे नॉलेज पे निकलोगे, आपका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे ही दवाई आपका काम करेगी आपके शरीर में। अगर हमने आपको 5 दिन का दवाई दी है तो 5 दिन के लिए ही है। हम वो मेडिकल साइंस में कुछ प्रूवन थिंग्स रहती है जो बहुत पहले बहुत सालों से प्रूव होके आई है, रिसर्च में आई है कि ये दवाई 5 दिन तक काम करेगी तो 5 दिन तक ही काम करेगी। ऐसा अभी देखिए, थोड़े लोग करते हैं जो 5 दिन के 7 दिन कर देंगे, और एक तरह के लोग हैं जो 5 दिन का 2 दिन में छोड़ देंगे। अभी ये जो डिफरेंस मेजर है, आप हमारे घर में एग्जांपल देख लीजिए, आपने कुछ एक महंगी दवाई ली 1000 रुपये की, तो हमारे घर की जो माएँ रहेंगी वो समझो 1000 रुपये की दवाई 5 दिन में ख़त्म करनी है, बट उसमें थोड़े पूड़ियाँ बच जाएगी, 3-4 पूड़ियाँ बच जाएगी अभी, क्योंकि वो 1000 रुपये की है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली की माएँ हैं वो बोलेगी 3-4 दवाई तो बची है, कंप्लीट कर लो, 1000 रुपये फालतू के वेस्ट हो जाएंगे। तो 5 दिन का एक्सटेंड करके 10 दिन कर देते हैं, जो डोज बढ़ा देंगे। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो 5 दिन से 2 दिन करते हैं, वो जनरली हमारे एज के लोग हैं कि अभी मुझे फुटबॉल खेलना है, मेरे को छाती दुख रहा था, 5 दिन का दवाई दिया गया था, मेरे 2 दिन में छाती दुखना बंद हो गया, तो अभी मैं कल फुटबॉल खेलूंगा और मैं दवाई बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा काम हो गया। तो ये जो दो तरह के जो लोग हैं, ये दोनों भी गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डोज जिस तरह के से काम करते हैं शरीर में, उसका हर दवाई का अपना टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि इनो नहीं है सब 6 सेकंड में काम कर गए, या मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई। सब दवाई अंदर जाती है, कुछ दवाई 36 आवर्स में काम करेगी, धीरे धीरे धीरे धीरे निकलती रहती है पेट में। सबका अलग अलग एक पाथ है, कुछ लीवर में जाके काम करती है, कुछ खून में जाके काम करेगी, कुछ पेट से एब्जॉर्ब होगी। तो हर चीज़ का एक अपना अपना समय, एक कहावत है ना, सही चीज़ को टाइम लगता है और जल्दी का काम शैतान का काम होता है।
1: अच्छा, ये सेल्फ मेडिकेशन की जो बात है, जिसको कोमॉर्बिडिटी रहती है तो उसके लिए तो बहुत डेंजर चीज हो सकती है।
2: जी सही बात है। तो कोमॉर्बिडिटी, अभी मैं पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कोमॉर्बिडिटी क्या होता है। मॉर्बिडिटी, इसमें भी 2 वर्ड है। सब आप वर्ड को अगर संधि विच्छेद करोगे तो आपको उसका मतलब खुद ही समझ जाएगा, आपको कोई ऐसा विद्वान नहीं चाहिए कि वो आपको समझा सके। जैसे सेल्फ मेडिकेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी कोमॉर्बिडिटी भी आपको मैं तोड़ के बताता हूँ। 2 वर्ड्स है इसमें, एक को है और एक मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी मतलब आपके शरीर में आपको पहले से कुछ बीमारियां है, वो मॉर्बिडिटी, और को मतलब उसके साथ आपको बाकी बीमारियां भी है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि आपको एक हार्ट कंडीशन है, ये आपका एक मॉर्बिडिटी है, इसके साथ आपको लंग का भी कुछ तकलीफ आ गया, जैसे निमोनिया हो गया या टीबी आ गया, तो ये आपको कोमॉर्बिडिटी आ गया। तो अभी ये सब है ना, ग्रुप ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होती है, ये ना शरीर के हाथ में होती है, ये जैसे जैसे इन्फेक्शन पकड़ते हमें या जैसे जैसे हमारे शरीर के सिस्टम जो खराब होते हैं वो अपना दिखते हमको असर। अभी ये सब चीज़ भी जब पिक्चर में आती है प्ले में, हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो मेडिकेशन रहते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो दवाई दिल पे, फॉर एग्जांपल जो दवाई दिल पे काम कर रही है वो शायद उल्टा काम करेगी अब हमारे लंग्स पे। तो हमें ऐसी एक बीच की दवाई ढूंढना है जो ना ज़्यादा दिल को तकलीफ पहुँचाए ना ज़्यादा लंग्स को पहुँचाए। तो इसके भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ता है। ऐसा ये बुक में फिक्स नहीं दिया रहता है कि अगर हार्ट और लंग्स खराब है तो ये दवाई ए दे दो, हार्ट और पेट खराब है तो दवाई बी दे दो, ऐसा नहीं होता। हर इंसान का जेनेटिक्स अलग है, DNA अलग है, हर इंसान को अलग दवाई सूट करती है, हर इंसान को अलग कंपनी की दवाई सूट करती है। बहुत कॉम्बिनेशंस करके, बहुत सोच समझ के हम ये दवाइयाँ का लिस्ट बनाते हैं। अभी इसमें आप थोड़े से जाओगे, अब बीच में आपको सर दुख रहा है, आप जाओगे कोई दवाई ले लोगे फार्मासिस्ट से, वो दवाई इस कॉम्बिनेशन में फिट होती है कि नहीं आपको पता है? नहीं पता है आपको, कैसे पता रहेगा आपको? क्योंकि डेप्थ नॉलेज है नहीं, ये हम लोग को भी नहीं पता रहता कि कौन सी दवाई किसके साथ रिएक्ट कर जाए. ये हमारे पास कभी कभी पेशेंट आते हैं जिनका दवाई रिएक्शन हो जाता है, तो हम वो दवाई को बंद करके दूसरी दवाइयाँ देते हैं. तो अभी दवाइयाँ जो केमिकल्स है आपस में ना लड़ाई लड़ाई भी कर सकती है या आपस में दोस्त भी बन सकती है, तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, मतलब डेथ का मामला भी बना सकते हैं, या आपके लिए एकदम बहुत एकदम मिराकुलसली काम भी कर सकती है.
1: अच्छा, तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, अगर समझो हम कंटिन्यूअसली लेते रहते और एट द एंड पॉइंट अगर हमको कोई बड़ी बीमारी होती है उसके लिए सर्जरी करनी पड़े या कुछ लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना पड़े, तो इसके लिए जो डॉक्टर आप जैसे है ट्रीटमेंट करने वाले उनको कुछ दिक्कत हो सकती है.
2: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजय जी. अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत कॉमन सी दवाई है अजिथ्रोमाइसिन मार्केट में, आपको मुझे सब माओ को सब पापा लोग को सब बच्चों लोग को इनफैक्ट सबको पता रहेगा, बहुत घर में इजीली मिल जाती है अजिथ्रोमाइसिन. ये एक एंटीबायोटिक है, इसके जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक है. अभी हमारे देश में या हमारी दुनिया में तकलीफ ये हो रही है कि ये सब आराम से मिल जाती है, इसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़े दवाइयाँ हैं जिसको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी किया है, तो वो अभी भी बची हुई है. ये सब दवाइयाँ जो आसानी से मिल जाती है, बच्चे या माएँ खरीद लेती है इसको कि चलो इसको फीवर हो गया, 3 दिन से फीवर है तो इसको हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, इससे कम हो जाएगा. बट उन्हें ये पता नहीं रहता कि एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है उस बच्चे को. फीवर भी वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है. अब वायरल फीवर में एंटीबैक्टीरियल दोगे तो आपको कुछ काम मिलेगा नहीं, आपके शरीर में जाके वो दवाइयाँ वेस्ट होगी. तो अभी दूसरा टॉपिक, अभी यहाँ पे मैंने बोला आपके शरीर में जाके दवाइयाँ वेस्ट होगी, बट ये आप ध्यान रखिए जो दवाई जो है आपका जो केमिकल है वो कभी आपके शरीर में जाके वेस्ट नहीं होता. वो कुछ ना कुछ तो आपको बॉडी में चेंजेस करेंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट लेवल पर चेंज है. छोटे छोटे चेंजेस लास्ट में आके बहुत बड़े हो जाते हैं. कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही ये जो आपका जो शरीर के अंदर जो गंदा सागर बन रहा है ये आपको डुबा सकता है आगे जाके. ये एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में जा रहे हैं, आपके शरीर को पता है हाँ ये दवाई आ रही है, ये दवाई मेरे अंदर आएगी मुझे ठीक कर देगी. तो इट्स लाइक आपके शरीर को आदत हो जाती है इस दवाई की. मैं एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल देता हूँ, शरीर को आदत हो जाएगी एजिथ्रोमाइसिन की, हाँ ये एजिथ्रो आता है मेरे शरीर के अंदर मेरे को बचा लेता हमेशा. एक टाइम पे आएगा कि आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, ये एक सेकेंड लेवल है. पहले आप 2 डोज पे काम करते थे, अभी आपको मेरे को 4 डोज देना पड़ रहा है, ये सेकेंड लेवल आ गया. थर्ड लेवल होता है कि आप कंटिन्यूस फिर भी आप सेल्फ मेडिकेशन करते जा रहे हो, बीच में डॉक्टर की सुनते नहीं हो, फिर आपको पावर बढ़ाना पड़ता है दवाई का. फिर आप एक बार 250 mg देते हो एजिथ्रोमाइसिन, बाद में आप 500 mg देने लग जाओगे, 625 mg दोगे, तो इससे पावर बढ़ गया. पावर बढ़ गया मतलब उसका केमिकल बढ़ गया, तो उतना आपके बॉडी में केमिकल लोड बढ़ गया. और आज आप दवाई ले रहे हो तो केमिकल आपके बॉडी से कब एलिमिनेट हो रहा है वो आपको पता नहीं, ना हमें वो पता है. तो उतने देर जितने देर वो आपके शरीर के अंदर वो चेंजेस करेगा, फिर ये सब ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारी दवाइयाँ है जो आपके इसमें तकलीफ पैदा करती रहेगी जो आप लेते रहते हो सेल्फ मेडिकेशन. एंड में किसी के साथ ऐसा हो नहीं, बट फिर कभी कभी बुरा हादसा हो गया, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल में, तो उस टाइम हमें बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल एक साइड पर हॉस्पिटल एक बचाने वाला मंदिर भी है, दूसरे साइड पर वो मरने वाला ये डेथ बेड भी है. तो वहाँ पे दोनों का बैलेंस रहता है, एक साइड पे वो हेवन टाइप रहता है, एक साइड पे वो डेथ वाला जोन रहता है, तो वहाँ पे कंटामिनेशन भी बहुत रहते हैं. तो उसको बचाने के लिए हमको मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकेशन देना पड़ता है. फिर अभी उसमें हम देंगे एजिथ्रोमाइसिन आपको, जिसको भी जरूरत पड़ा उसको हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे, पर वो काम ही नहीं कर रहा है शरीर पे. ये हमको कब पता चलेगा, 2-3 दिन के बाद उसमें उसकी हालत और गिर जाएगी नीचे. अभी एजिथ्रो काम नहीं कर रहा, इसके साथ हम इसके जैसे और भी दवाई देंगे, जैसे नॉर्फ्लॉक्सोसिन है, क्लिंडा, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, वो देते हम, वो भी काम नहीं कर रही है. तो इसका मतलब क्या है, वो काम क्यों नहीं कर रही है? आप तो पहले सोचेंगे पहले तो काम किया, एक ही गोली लेता था मैं काम कर जाती थी. ये यहाँ पे एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है. जैसे बचपन में कैसे आप बार बार मार खा रहे हो, अब पढ़ाई के लिए पापा मारते हैं, हम बार बार मार खाते हैं, फिर हमको पता चलता है हम मार्क्स नहीं लाएंगे फिर भी मार पड़ने वाली है. वो हमारा मेंटल ऐसा बन जाता है कि मार तो पड़ना
1: नहीं होगा,
2: हाँ दर्द ही नहीं होता. अब फिर वो बेल्ट से किधर चप्पल पे चले आए हमें पता ही नहीं चलेगा. तो ऐसे ही शरीर में अजीत्रो का रेजिस्टेंस ही हो गया है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, उसका केमिकल जरूरत ही नहीं करता है बॉडी में. तो अभी हमको ये तकलीफ आ जाती है डॉक्टर लोग की, अभी दवाई चलाए तो चलाए कौन सा, क्योंकि एक मेडिकल वर्ल्ड कितना भी प्रोग्रेस कर ले हमें एक लिमिटेशन है दवाई की. कितना भी हम केमिकल्स को कॉम्बिनेशन कर ले हमें एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस ही है. फिर हमको आपका ब्लड लेके हमको रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है. तो जितना हमारे पास 100 दवाई थी आपको उस टाइम बचाने के लिए, आपकी ही गलती के कारण अभी हमारे पास 10 दवाई बचाने के लिए. तो आपका ही जो बचने का रेट होता है वो 100 से 10 पे आ जाता है. तो ये जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि आप अपना ही गंदा सागर बना रहे हो खुद को डूबने के लिए, तो ये वैसे

0: अच्छा, और एक सवाल आ जाता है इसके साथ, जो कि आपने कहा था कि गूगल मेडिसिन यानी गूगल पे हम जाके सर्च करते हैं और गूगल जो कहता है उसकी तरह से हम मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ आजकल एक बहुत सारा वर्ड चलो टेली मेडिसिन, यानी कि हम किसी डॉक्टर को एज ए मोबाइल पे या बहुत सारे ऐसे ऐप भी है उसके जरिए हम मेडिसिन ले सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो?
1: देखिए, टेली मेडिसिन ये जो कंसेप्ट है, अभी इसका भी मैं अगर डेफिनेशन बताऊँ, टेली मतलब जो हम कम्युनिकेट कर पाए, जो हम लोग को फिजिकली जाना नहीं पड़े, वीडियो कॉल से या फोन कॉल से इससे कम्युनिकेट कर पाए उसको बोलते हैं हम टेली। और मेडिकेशन मतलब जो फोन पे मिल जाए, इस पे ही दवाई मिल जाए। हम बहुत करते हैं ना, जैसे हमारे परिवार में डॉक्टर होगा, कोई होगा डॉक्टर, तो हम बोलते हैं बेटा मुझे सर्दी हुआ है, मुझे खांसी हुआ है, तो कौन सा दवाई दूँ ये, और वो भी कोई दवाई बता देगा क्योंकि फैमिली मेंबर है। ये टेली मेडिसिन का एक तरीका हुआ। अभी ये जो कंसेप्ट है ये फॉरेन में बहुत चलता है, वो वहाँ पे बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो टेलीमेडिसिन के भी दो भाग है, एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। अभी फॉरेन में ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे फुल एडवांटेज चल रहे, वहाँ पे भी डिसएडवांटेज है, पर वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि वो लोग सुधर गए ओवर द ईयर्स। और ये धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है क्योंकि 5G हो गया, तो लोग टेलीमेडिसिन का यूज़ कर रहे। अभी टेलीमेडिसिन हम ये कंसेप्ट आया क्यों था इस दुनिया में, ताकि जो बाहर के गाँव है, जो जहाँ पे रिमोट एरियाज, जी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे ट्रेन्स नहीं जा सकती, जहाँ पे जान पहुँचने को 2-3 दिन लग जाते हैं बसेस के साथ, वहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे डॉक्टर एक वीडियो कॉल के जरिए, वो देखने के जरिए से वो उनको मदद कर सकते हैं। ये यूज था टेलीमेडिसिन का। दूसरी बात कि आप इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस में ट्रांसफर हो रहा है और उधर ही कोई क्रैश हो रहा है, तो मैं सीनियर डॉक्टर को कॉल करके हम पूछ सकते कि अभी हम क्या करें, ये काम था। पर अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि हम घर बैठे बैठे फार्मासिस्ट को बोल देते कि हमारे घर पे ये हो रहा है, तो आप ये दवाइयाँ हमें भिजवा दीजिए। हम आजकल उनसे पूछते भी नहीं है कि क्या देना है क्या, पहले तो हम पूछते थे, अभी हम एक लेवल और ऊपर चले गए, तो वो घर पे लाएगा फ्री होम डिलीवरी। ये कंसेप्ट से हम जितना आलसी होते जा रहे हैं उतने हो रहे। डॉक्टर को भी हम जाएंगे भी, अभी मैंने देखा है बहुत सारे ऐप्स भी है जो वीडियो कॉल करती है डॉक्टर के साथ। जो डॉक्टर का आप फिजिकली मीट करोगे उसका 2000 फीस रहेगा फॉर एग्जांपल, वही उस ऐप पे वो 250 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो आप 2000, इतना जो बड़ा अमाउंट गैप है वो आप बचाने के लिए आप वीडियो कॉल कर दोगे। थोड़ी बीमारियां वीडियो कॉल से हो जाएगी ट्रीट, मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं, पर फिर थोड़ी बीमारियां जो आपके स्किन के रिलेटेड है, जैसे डर्मेटोलॉजी हम बोलते हैं, वो हमको देखना पड़ता है, हमको यूवी लाइट के अंदर देखना पड़ता है कि क्या बीमारी है और किधर है, कैसा दिख रहा है, वो फिर भी थोड़े डॉक्टर्स उसको प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि डॉक्टर ये नहीं चाहते कि वो प्रैक्टिस करे वैसा, बट लोग का डिमांड है वैसा कि हमें बस 250 में ये डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए। तो ये टेलीमेडिसिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में प्ले कर रहा है हमारे भारत में, पर आने वाले सालों में मैं आशा करता हूँ कि और सुधरेगा और लोग और थोड़े जागरूक होंगे इसके बारे में और इसको थोड़ा वाइजली यूज करेंगे।
0: अच्छा, श्रोते आपण जी चर्चा करत होतो ती डॉक्टर चिन्मय चौरसिया यांच्यासोबत, तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत। तो डॉक्टर चिन्मय जी, आप क्या कहना चाहोगे कि फाइनल गोल्डन वर्ड्स, जैसे तो सेल्फ मेडिकेशन का तो हमने कहा ही है, फिर भी एक अगर एक मिनट में कुछ कहना चाहोगे तो समरी ऑफ द अपना इंटरव्यू जो है उसके बारे में क्या कहना?
1: जी मैं थोड़ा नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप मैं यही विनती करता हूँ नॉर्मल इन पब्लिक लोग से, जो जनरल पॉपुलेशन है, कि जैसा आजकल हवा चल रहा है मार्केट में कि डॉक्टर लोग पैसा खाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये पैसा खाने की बात है नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन आपके लिए, और ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग के वजह से ही हो रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमें एक इन्वेस्टिगेशन में जो पहले पता चलता था वो नहीं पता चल रहा है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आपको छोटी से छोटी बीमारी भी हो, चाहे आप मेजर स्पेशलिस्ट से ना दिखाई, आप नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर से दिखाई, जो MBBS है सादा, उनका फीस भी कम रहता है, पर आप उनको दिखाइए, उनको भी नॉलेज रहता है, तो वो आपको बराबर डायग्नोस करे, मतलब सही समय पे सही दवाई जानी चाहिए सही क्वांटिटी पे। ये जो तीन चीज मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे जाके कुछ हो नहीं। इट्स बेसिकली यू आर प्रिजर्विंग योर फ्यूचर बाय एक्टिंग करेक्टली इन प्रेजेंट।
0: तर श्रोते होते डॉक्टर चिन्मय चौरसिया जे तेरणा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहेत, आणि त्यांनी एकूणच सेल्फ मेडिकेशन म्हणजे स्वतःहून आपण जे औषधं घेतो तर त्याविषयी त्यांनी विस्तृत असं मार्गदर्शन केलेलं आहे। डॉक्टर चिन्मय जी, आप यहां पे आए और जो जानकारी दी उसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।
1: धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद।
0: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM। श्रोते रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण जर अँड्रॉइड फोन वापरत असाल तर त्यावर आपण गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन आपण रेडिओ तेरणा हे ॲप डाउनलोड करू शकता। आपण आयफोन वापरत असाल तर ॲप स्टोअरवरूनही रेडिओ तेरणा डाउनलोड करू शकता। रेडिओ गार्डनवरही आपण रेडिओ